0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com।

अच्छा पंजाब ताजा ताजा कौन जाके आया? 905-673-3337 905-673-3337 अभिषेक जी थोड़ी कॉल आ रही थी, माफ करना प्लीज दोबारा कॉल कर लो, मैं थोड़ा जा बिजी सीगा, तो प्लीज कॉल ना हो। सो आप हूँ गल्लां बातां भी करांगे थोड़े फरमाइशी गीत संगीत और फिर हूँ 10 बजे तक इदा ही रौनक लाउणी आपां रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां, तो उस तो बाद 9 to 10 रेडियो प्रोग्राम उड़ान लैके हाजिर होवांगे। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू। मिट्टी दे विचों हीरे लभन की गल आ कि जिसनों जो चंगा लगता जिस जिस जिसकी जिदा की नीयत होंगी है ना, वो देखो कई पंजाब नू कहिंदे कि नहीं यार पंजाब हुण वो गल्लां नहीं रह गईयां, कई कहिंदे कि नहीं यार इत्थे भी तो उही चीज़ां आ। सो मैनू लगता कि मिट्टी सारी ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਵਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸਭ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦਾ।

सतगुरु होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान, जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान। प्रभ संत दे नाल।

33 33 और 6430 एरन मिल पार्क वे। फोन नंबर मिसी सागा का नंबर है 905-542-1333। लंडन हेलीफैक्स और विंडसर दे विच भी ब्रांच है। शुद्ध

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: चेहबर लगेगी, नवे पुराने गीता दी
1: बाता होंगिया, सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर। लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ले आज ही कॉल करो 416-917-7073 416-917-7763।

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर दे विच, खूबसूरत चढ़ती कला रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके।

0: 7 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स पेस्ट्रीज मठियाइयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचने वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
1: आप दे नाल शेयर करेंगे जी मोबिल गैस स्टेशन जरा के नियाग्रा फॉल च गावे 2020 बिल्ड होया सी डबल वॉल फाइबर ग्लास टैंक दे नाल ही का जे एच स्टोर बहुत अच्छा है गावे एदे तीन पंप ही गने कैनोपी लगी हुई है फैबुलस लोकेशन ये प्राइम लोकेशन इन नियाग्रा फॉल सिटी और एहो जिहा मौका तुसीं अपने हथों जान नहीं देना एदे वास्ते कॉल करनी होगी 6479884449 हसीब शेख 6479884449 सेवा का मौका।

0: Instagram या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: जिंदगी हैरानियां नाल भरी हुई है पर तुम्हारे परिवारों का फ्यूचर उन्हां विचों एक नहीं होना चाहिदा प्लैनेट इंश्योरेंस तो कित्ती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसी अपनी लाइफ दी सारीयां इंपोर्टेंट चीजां नूं प्रोटेक्ट कर सकदे हो ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल भी ने ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे आं तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड ते तुसी कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535
4: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ Cellular Point, more phones, more plans, more choice.
5: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल इतनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लबो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब .ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा, दाल, चावल, दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
7: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा, विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888। दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर लै गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
7: विमला विलेज लविलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा। विमला विलेज लविलेज विमला विलेज लविलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।
8: मित्रां दे जंक्शन ते
9: हो केड़े जंक्शन ते
10: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
8: रात लगियां महफलां रे
10: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-4290-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
11: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper. Tusi cheap flight tickets si pal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne. Ja tusi visa services di pal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages vi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Earth.

क्या बात है, वीकेंड आ रहा है, मौसम बहुत प्यारा खूबसूरत गर्मा गर्म है, धुप निकली है पूरी। सो एंजॉय करो इस खूबसूरत प्यारे जी वैदर नू, ते थोड़ी जी वैदर दी होर भी इंजॉयमेंट नू वधाउणे यार, कठे गीत संगीत सुनिए, गल्लां बातां करिए, रौनक मेला फुल बटा फुल। 9 बजे तक असीं तुहाडे नाल, 9 बजे तक भंगड़े भी पैणगे, गिद्दे भी पैणगे, गावांगे खूब, ते खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पर किस दा दिखायो ना, ते दारू पी के गड्डी चलायो ना।

0: आप 1 अगस्त के बाद आएंगे फैमिली ऑफ टू में, आपको जो आज 14,000 की नॉन रिफंडेबल ग्रांट जो आपको कॉलेज की फीस माइनस करके आपके खाते में आ रही है, साथ में 17,000 का 0% पे लोन आ रहा है, 1 अगस्त के बाद सारा ही लोन आएगा, ग्रांट वर्ड यूज ही नहीं होगा उनके केस में। तो अभी फायदा है, अभी एनरोल करें, फंडिंग हासिल करें, सोखे जे कोर्सेज करें, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक।
1: नंबर है सरांश दा, तुसी हुणे लिख लो 4372643175 4374315। सरांश कोर्सेज केड़े केड़े ने ते डॉक्यूमेंट केड़े लगदे आ?
0: हाँ जी, कोर्सेज ज्यादातर क्लाइंट्स चूज ही करते हैं, लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज। अब आप हमारे क्लाइंट ज्यादातर हैं 40-50 साल के, तो हम उनको उन कोर्सेज में नहीं डालते जहां वो बैग पैक लेके लंच बॉक्स लेके कॉलेज जाएं। कोविड के बाद से फुली ऑनलाइन कोर्सेज मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखे हैं। फुली ऑनलाइन कोर्सेज है मैनेजमेंट के, अकाउंटिंग सीखें आप, 3 घंटे आपने देने मंडे टू फ्राइडे। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सेल्फ स्टडी मॉडल पे हैं, उसमें आपका एफर्ट कम लगता है, बहुत इजी है वो। साथ में अगर आपको HVAC जैसे स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं, प्लम्बिंग वाले, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट, PSW, वो भी है, सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फंडेड है। आपकी जेब से पैकेट पैसे नहीं जा रहे, उल्टा आपकी जेब में लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डालती है, मेरे में नहीं, आपके अकाउंट में। 30,000 से लेकर 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स।
1: नंबर सरांश दा 4372643175 4374315 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੋ ਕੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਕਮ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਸਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੈਚ ਇਨ ਇਟ। और लाइक इसमें आपका सर्विस कैनेडा नाम का डिपार्टमेंट है, वो डील करता है, CRA से लोग डरते हैं तो वो डील नहीं करता है इसको। और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में फंडिंग 30 से 90 डेज में डालती है, ये नहीं कि आपने आज एनरोल करा कल डाल दी, नो। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को जाते हैं, 30 से 90 डेज में वो असेस करते हैं, आपको एस्टिमेट तो वो भी दे देंगे, फिर फंडिंग रिलीज होती है। तो ये नहीं कि पहले सीबा लोन की तरह नहीं आज पैसे दी कल मांग लिए, ना, पहले असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स। हमारी फीस काम होने के बाद 199 से $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट इतनी चीजों में फॉरन एड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर लगा देती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है जी। कॉल करें 4374315 4374315 हुणे कॉल करो 4372643175 4372643175। साडा प्रॉपर ऑफिस हैगा जी 1,000 square feet का, 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे। हम टिम होटन पे नहीं मिलते क्लाइंटों से, हम 7 years से बिजनेस में, हजारों क्लाइंट को ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, आप कल हमारा पंजाबी लहरा का लाइव भी है, आप इन्वाइटेड है।
1: वेरी गुड, क्या बात है। सो जरूर सरांश का नंबर नोट कर लो 4372643175। सरांश बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू जी,
1: थैंक यू जी। 2586 हेलो,
2: सचिकल भाजी की हाल है?
1: वधिया, फिर किवें हो?
2: वधिया वधिया भाजी, गाना ही ला दो यार।
1: केड़ा लाइए?
2: मलकीत सिंह दा ला दो, पटता शकीन मुंडा फुल वर्गा ने तो रख दी शकीनी ला के
1: पटता। अच्छा मलकीत जी दा ये केड़ा गाना, एक मिनट मैं लब लवा। पटता
2: किन्नी सोहनी लगे जदों हस्से घुरी वट के लंघ जे नीवियां पा के, पटता शकीन मुंडा फुल वर्गा।
1: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ला दने, चक देंगे पट्टे।